निंदक की गत कत हूं नाहे, आ भी जापे ही खाहे। चोर जार जुआर ते बुरा, अनहोंदा पार निंदक सिर तरा। पार ब्रह्म के भगत निर्वैर, सो निस्तर जो पूजै पैर। आद पुरख निंदक पोलाया, नानक कीर्तना जाय मिटाया। पैरव महला पंजवा, नाम हमारे बेदर नाद। नाम हमारे पूरे काज, नाम हमारे पूजा देव। नाम हमारे गुर की सेव, गुरपुरे दृढ़ो हर नाम। सब ते उत्तम हर हर काम रहाओ। नाम हमारे मज्जन इशनान, नाम हमारे पूर्ण दान। नाम लैते सगल पवीत, नाम जपत मेरे पाई मीत। नाम हमारे सौन संजोग, नाम हमारे तृप्त सो भोग। नाम हमारे सगले आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार। जाके मन वस्या प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक। मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवै नाओ। पैरव महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना। अनक पाप जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम। भगत अपने कहो देवो नाम।

रोगी का प्रभु खंडव रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभु सोग। निथावे कहो तुम थान बैठावो, दास अपने कहो भक्ति लावो। निमाणे कहो जो दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुज्ञान। सगल पयान का पौ नस, जन अपने कह हर मन बस। पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, तत् ज्ञान हरे अमृत नाम। कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए। पहरो महला पंजवा, संत मंडल में हर मन वसै। संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में निर्मल दीत। संत संग हुए एक प्रीत, संत मंडल तहां का नाओ। पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ। संत मंडल में जन्म मरण रहे, संत मंडल में जम किशु ना कहे। संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी। संत मंडल का निचले आसन, संत मंडल में पाप विनाशन। संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा। संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुणतास। संत मंडल ठाकर विश्राम, नानक उत्पोत भगवान। पैरव महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप। ते जन होए न दुख संताप, जिस ऊपर प्रभ कृपा करे। तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम। जिस चीते आवे ते सदा सुख होवे, निकट ना आवे ता कह जाम रहाओ। जब एहो नासो तब किने उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया। आपे मारा आप जीवल है, अपने भगत को सदा प्रतिपाल है। सब किश जानो तिसके हाथ, प्रमेरो अनाथ को नाथ। दुख पंजनो ता कहे नाओ, सुख पावे तिसके गुण गाओ। सुन स्वामी।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मै लए दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रख नहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक औसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राखे देकर हाथ निर्मल सोबा।

सो जीवन मुक्ता जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता, जिस नाम हृदय तिन नौनद पाई, नाम बिना भ्रम आवै जाई। जिस नाम हृदय सो विप्रवाह, जिस नाम हृदय ते सदही लाहा। जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गावारा। जिस नाम हृदय तिस निश्चल आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन। जिस नाम हृदय सो साचा साहो, नाम हीन नाही पतवे साहो। जिस नाम हृदय सो समय जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख विधाता। जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना परम जोनी मूचा। जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधियारा। जिस नाम हृदय सो पुरख प्रवान, नाम बिना फिर आवन जान। तिन नाम पाया जिस पयो कृपाल, सा संत मैं लखे गोपाल। आवन जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्तै तत् मिलाया। पहरो महला पंजवा, कोट बिसन कीने अवतार। कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल, कोट महेशो पाए समाए। कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो तनी गोविंद हमारा। बरनासा को गुण विस्थारा रहाओ, कोट माया जाके सेवकाए। कोट जी जाकी सह जाए, कोटो पार जना तेरा अंग। कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार। कोट इंद्र ठंडे है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माहे। कोट नाम जाकी कीमत नाहे, कोट पूरियत है जाके नाद। कोटा खारे चलत बिस्माद, कोट सगत से आज्ञाकार। कोट जी देवे आधार, कोट तीर्थ जाके चरण मजार। कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पुजारी करते पूजा। कोट विस्थार ने अवर ना दूजा, कोट महिमा जाकी निर्मल हंस। कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मांस। कोट परलो ओपत निमख माहे, कोट गुणा तेरे गणे न जाहे। कोट ज्ञानी कथा ज्ञान, कोट त्यानी तरत ध्यान। कोट तपीसर तप ही करते, कोट मुनीसर मोहन मह रहते। अवगत नाथ या गोचर स्वामी, पूर रह प्रभ अंतर्यामी। जात कत देखो तेरा वासा, नानक कहो गुर कियो प्रगासा। पैरो महला पंजवा, सतगुर मोको कीनो दान। अमोल रतन हरदीनो नाम, सहज बिनोद चो जानंता। नानक कहो प्रभ मिलो अचिंता। कहो नानक कीर्त हर साची, बहुर बहुर ते संगमन राची। रहाओ अचिंत हमारे भोजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ। अचिंत हमारे शब्द उधार, अचिंत हमारे परे भंडार। अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे विसूरे। अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही मन वस कीता। अचिंत प्रभु हम किया दिलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा। अचिंत हमा कहो सगल सिद्धांत, अचिंत हम कहो गुर कीनो दीनो मंत। अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर। अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ कड़कड़ डीठा। अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा। अचिंत हमारे अनहद वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे। अचिंत हमारे मन पतिया ना, निचल तनी अचिंत पछाना। अचिंतो उपजियो सगल बबेका, अचिंत चरी हथ हर हर टेका। अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिलियो प्रभ ठाकरे को। चिंता चिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई। पैरव बाणी भगता की, कबीर जियो कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद एहो तन मेरे।

नाव मेरे बंधप नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हां ता को दास, नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौ नद मेरे, संपै हेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता हो संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कह कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीह तो दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सहिस्माना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कत न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप आ पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओह चेतना धरे। रहाओ जो निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्दन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्दन सरदन दोनों पाई, प्रभु की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्दन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद पूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, पजले रेह मन सारंग पानी। आब ना पजस पजस का उपाई, आवै अंत ना पजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताव ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवै जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुधसार, तह तुम मिलकै करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन कर मेरा कर कर मरै। निज पद

सो सुरतान जो दोए सरतान है, बाहर जाता पीतर यान है, गगन मंडल में लश्कर कर है, सो सुरतान शत्र सर तर है, जोगी गोरख गोरख कर है, हिंदू राम नाम उच्चर है, मुसलमान का एक खुदा है, कबीर का स्वामी रया सुमाए, महल्ला पंजवा। जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसे, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए, ठाकर हमरा सद बोलंता सर्ब जिया को प्रावधान देता रहा, अंतर देव न जान अंध भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव, जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कौन फल पावे, जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई, कहत कबीर हाँ कहो पुकार समझ देख सागत गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले, जल में मीन माया के बेदे दीपक।

अंतरयामी प्रभ दयाल अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जप तो कछ नहीं संताप। गोबिंद जप तो सब मिटे अंधेर, हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारा राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ। संत जनी किया उपदेश, जह गोबिंद भगत सो धन देस। हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान। हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग। निगट पेख प्रभ करन हार, ई तूत प्रभ कार्य सार। चरण कमल सों लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा। प्रभ रखवाले माई बाप, जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई। साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके। बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओ अपना बीजा आप खाहे। जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभदास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप। गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवे हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया। सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवे नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती। सागत फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास। पह बिन से निरपै पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस। जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अहिट सिद्ध नवनिद एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह। प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया। तुम रवो गोबिंद रमण योग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया। से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवां, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना। मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे। नित रातो हर नाम रंग रहाओ, कर कृपा प्रगटे गोपाल। लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर। नित देखे स्वामी हजूर, काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवां, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप। सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप। जो जन तेरा जपे नाम,
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਦੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹਾਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਇਨ ਬਿਧ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੰਤਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਜੀਤੋ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ ਬਸ

भागे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतर सनाही, ब्रह्म अगन के लूठे। अगन पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, ऊहा तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगल बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही रह बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना राम नाम ना छाडै। गंगा गया गोदावरी, संसार के कामा। नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। लोभ लहर अत निजर बाजै, काया डूबे केसवा। संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार लै बाप बीठला। रहाओ अनल बेड़ा हो, खेव ना सकौ, तेरा पार ना पाया बीठला। हो दयाल सतगुर मेल, तू मोको पार उतारे केसवा। नामा कह हौ तार पी ना जाना, मोको बहां देह बीठला। सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती, पीछे तिनका लेकर हागती। जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती, सर धोवन चाली लाडली। रहाओ धोबी धोवे बिरा बिराता, हर चरण मेरा मन राता। पंडित नाम देव रम रहे, अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कशु नाहे, पहरावा देखे उपजाहे। गर्भवती का नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ। तू काए गर्भ बावली, जैसे पांदव खूंबराज। तू तिस्ते खरी उतावली रहाओ। जैसे कुरंक नहीं पायो भेद, तन सुगंध ढूंढे परदेस। आप तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुवार। पुत्र कलत्र का करे हंकार, ठाकर लेखा मंगनहार। फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसे पुकारे पियो पियो। साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपै नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पुष्ट ऊपर चमक बाल। इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे, और किसी के तू मत ही जाहे। रहाओ चाकी चाटे चून खाहे, चाकी का चीथरा कहां ले जाहे। शीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी परे पीठ। कह कबीर भोग भले कीन, मत को मारे ईट टेम। राग सारंग चौब दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरभउ निर्वैर।
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਾ ਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ ਚਰਨ ਕਹੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਬੇਰੀ ਰਹਾਉ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਹਮਾਰੇ ਮੋਹਨ ਮੋਹੇ ਲਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ

महाबज्र बिख ब्यादी सिर उठाई पोट, उगर गईया खिनह पीतर जमै ग्रासे चोट। पस परेत उष्ट गर्दब अनक जोनी लेट, पज साध संग गोबिंद नानक कश ना लागै फेट। सारंग महला पंजवा अंधे खावै बिसु के गटाक, नैन सरवण शरीर सब हुट्यो। सास गयो तत्काट रहाओ, अनाथ रान उधर ले पोखे माया गईया हाट। किल बिख करत करत पछतावै, कब न सकै शांट। निंदक जमदूती आए संघारे, ओ देवै मुंड उपर मटाक। नानक अपन कटारी आपस कौ लाई, मन अपना कीनो फाट। सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच, जनका राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच। रहाओ उसका कहया कोई ना सुनई, कहीं ना बैसन पावे। इहां दुखिया गै नरक पुंचे, बहु जोनी परमावे। प्रगट पया खंडी ब्रह्मंडी, कीता अपना पाया। नानक सरन निरपव करते की, आनंद मंगल गुण गाया। सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार, पूर्ण होत न कथो बातै अंत प्रतिहार। रहाओ सांत सुख न सहज उपजै, एह इस व्यवहार। आप पर का कछ न जानै, काम क्रोध यार। संसार सागर दुख व्यापियो, दास लेवो तार। चरण कमल सरनाए नानक सच सदा बलिहार। सारंग महला पंजवा रे पापी तै कमन की मत लीन, निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जंदीन। रहाओ खात पीवत स्वंत सुखिया, नाम सिमरत खीन। गर्भ उदर बिललाट करता तहा होवत दीन। महामाद बिकार बादा अनक जोन परमीन, गोबिंद बिसरे कवन दुख गनिय सुख नानक हर पद चीन। सारंग महला पंजवा मायरी चरना उठ गही, दर्शन पेख मेरा मन मोहयो दुर्मत जात बही। रहाओ अगह अगाध ऊंच अबनासी, कीमत जात ना कही। जल थल पेख पेख मन बिकसियो, पूरे ओ सर्व मही। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मिल सादे कीनो सही। सिमर सिमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना फही। सारंग महला पंजवा मायरी मन मेरो मतवारो, पेख दयाल आनंद सुख पूर्ण हर रस रप्यो खुमारो। रहाओ निर्मल पय उजल जस गावत, बहुर न होवत कारो। चरण कमल स्यों डोरी राची, पेट्यो पुरख्या पारो। कर गह लीने सर्बस दीने, दीपक पय उजारो। नानक नाम रसक बैरागी, कुलै समूहा तारो। सारंग महला पंजवा मायरी आन सिमर मर जा, त्याग गोबिंद जियन को दाता, माया संग लपटा हे। रहाओ नाम बिसार चले अनमार्ग, नर घोर मै पाहे। अनक सजाई गणत न आवै, गर्भ गर्भ परमाहे। से तनवंते से पतवंते, हर की शरण समाहे। गुरप्रसाद नानक जग जीतियो, बहुर न आवै जाहे। सारंग महला पंजवा हर काटी कुटलता कुठार, ब्रह्म बन दहन पय खिन पीतर, राम नाम प्रहार। रहाओ काम क्रोध निंदा पर हरिया, काढ़े साधु कै संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया, बहुर न जुवै हार। आठ पहर प्रभ के गुण गावै, पूर्ण शब्द विचार। नानक दासन दास जन तेरा, पुनः पुनः नमस्कार। सारंग महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोबिंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचै, बिरले लागै ध्यान। जिसै कृपाल होए मेरा स्वामी, पूर्णता को काम। जा कर दै वसै पै पंजन, तिह जानै सगल जहान। खिन पल बिसर नहीं मेरे करते, एहो नानक मांगै दान। सारंग महला पंजवा वूठा सर्व थाई में हो, आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो ने हो। रहाओ चार कुंट दह दिस जल निद, ऊन थाओ ना के हो। कृपा निद गोबिंद पूर्ण, जी दान सब दे हो।
ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਵਾਮੀ ਸਤ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹੋ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਪਜੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਰਮੇ ਹੋ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਤੁਮਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਾਓ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਫਲ ਪਾਏ ਰਸਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਆਪ ਚਲ ਨੀਮ ਧਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਭੂ ਡੋਲਤ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਾ ਭੈ ਦਯਾਰਾ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧ ਪਾਹੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਿਭਹੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸਚ ਖੇਪ ਲਾਭ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਿਧ

जैसा करे कहावे तैसा, ऐसी बनी जरूरत। होवे लिंग चिंग न होवे, ऐसी कही है सूरत। जो उस इच्छे सो फल पाए, ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है, अमृत रस फलिया। जिस प्राप्त सो लहै, गुर शब्दी मिलिया। सतगुर कह पाणे जो चलै, हर सेती रलिया। जम काल जोहे न सकई, कर चानन बलिया। नानक बख्स मिलायन, फिर गर्भ ना गलिया। श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान। दया देवता खिमा जप माली, ते मानस प्रधान। जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए। पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा, नौमी नेम सच जे करे, काम क्रोध तृष्णा उचरे। दसवीं दसे द्वार जे ठाके, एकादशी एक कर जाने। द्वादशी पंच वसगत कर राख, तौ नानक मन माने। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजे। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विखमाया। कर कर हेत वधाए, दे पर दर्प चुराया। पुत्र कलत्र ना विस है, बहुप्रीत लगाया। वेखद्या ही माया तुहे गई, पछता पछताया। जमदर बदे मारी है, नानक हर पाया। श्लोक महला पहला। ज्ञान में हुना गावे गीत, भुखे मुला करे मसीत। मखटू होए कह कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए। गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कह मूल न लगी है पाए। काल खाए किश हथों दे, नानक राहो।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निद ठाकर नवनिद नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राए। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सभा उठ गुरपूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लाग आए। मलार महला पंजवा खीरा दार, बारक जब होता बिन खीरा रहन ना जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अग्न कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नव निद नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आग्या हे दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करिया, तजो सगला देसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोज खोज मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाय। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पहे सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पहे आनंदा गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बो जोनी टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कथ सागर बिरथा कथत हम तरते। सेव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न मैं जरते, नानक सरन चर

खावै पंज सह दाना खाए, डकै फूकै केहे उड़ावै साहे गए पछताए। अंधी फूक मुई देवानी खस मिट्टी फिर पानी, अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिलाए। खसमै भावै ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए। सकता सी हो मारे सह मेरे सब पिछे पै खाए, ओहे सताना कुरै न मावै सहे गै पछताए। अंधा किसनो बुक सुनावै खसमै मूल न पावै, अग स्यो प्रीत करे अक तिड्डा अग डाली बै खाए। खसमै भावै ओहो चंगा जे करे खुदाए खुदाए, नानक दुनिया चार दिहा।

तिन पौ सागर तरना, पौड़ी अगमा गोचर तू धनी सच्चा लख्या पार, तू दाता संमंग ते को देवनहार, जिनी सेव्या तिनी सुख पाया गुरमती विचार, एक ना नो तुद एवै पहमदा माया नाल प्यार, गुर कै शब्द पसला ही है अंतर प्रेम प्यार, विण प्रीति भगत ना हो वही विण सतगुर ना लगे प्यार, तू प्रभ सब तुद सेव दे एक ढाडी करे पुकार, देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार, श्लोक महला पहला, राती काल कटे दिन काल छिजै काया होए पराल, वर्तन वर्तया सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तबताल, अंधा चख चख पया चेर पिछे रोवै लियावै फेर, बिन बूझे के सूझे नाही मोया रोहे रोंदे मर जाही, नान खसमै वै भावै सही मुए जिन चित ना आवै, महला पहला, मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैरवादी, वन गया रूप विनसिया दुखी देह रली, कित्थों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी, मनमुख गल्लां गोईया कीता चौरली, नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी, अमृत नाम सदा सुखदाता अंते हुए सखाई, बाजगुरु जगत बौराना नावे सार ना पाई, सतगुर सेवै से प्रवान जिन ज्योति ज्योत मिलाई, सो साहेब सो सेवक तेहा जिस भाणा मन वसाई, आपणे भाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई, बिख्या कदे ही रजै नाही मूर्ख भुख न जाई, दूजै सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ ना पाई, सतगुर सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई, श्लोक महला पहला, सर्व धर्म दोए नानका जेतन पल्ले पाए, सो तन मित्र ना कांडिया जित सिर चोटां खाए, जिनकै पल्ले धन वसै तिनका नौ फकीर, जिनकै हृदय तू वसै ते नर गुणी गहीर, महला पहला, दुखी दुनी सहेड़ी है जाए ता लगे दुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी भुख, रूपी भुख न उतरै जा देखा ता भुख, जे तेरा शरीर के तेते लगे दुख, महला पहला, अंधी कमी अंध मन मन अंधे तर अंध, चिकड़ लाया क्या थी है जा टुटे पत्थर बंद, बंद टुटा बेड़ी नहीं ना तुल्हा ना हाथ, नानक सच्चे नामिण केते डुबे साथ, महला पहला, लख मन सोयना लख मन रूपा, लख साहा सिर शाहो लख लश्कर लख वाजे ने जे लखी कोड़ी पातशाहो, जिथे सायर लंघना अगन पानी असगा हो, कंधी दिस न आवई ताही पवै कहा, नानक उथे जानिए साह के ही पातशाह, पौड़ी, एक ना गली जंजीर बंदर बाणी है, बदे छुट्टे सच सच पछाणी है, लिखिया पल्ले पाए सो सच जानिए, हुक्मी होए नबेड़ गया जानिए, पहो जल तारनहार शब्द पछाणी है, चोर जार चुवार पीड़े कहानी है, निंद कलाए तवार मिले हड़वाणी है, गुरमुख सच समाए सो दरगह जानी है, श्लोक महला दूजा, नाव फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाओ, अंधे का नाव पारखू एवै करे गुआओ, इलत का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानी है कल का इहो न्याओ, महला पहला, हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाओ, फांदी लगी जात फहाए नो अगे नाही थाओ, सो पढ़िया सो पंडित बीना जिनी कमाणा नाओ, पहलों दे जड़े अंदर जम्मै ता उपर होवै इशाओ, और आज ऐसी ही मुकदम कुत्ते जाए जगाए नो बैठे सुते, चाकर नहदा पाए नकाओ, रात पेत कुत्ते हो चट जाओ,
ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸਾਰ, ਨੱਕੀ ਵੱਡੀ ਲਾਏ ਤਬਾਰ, ਪੌੜੀ ਆਪ ਪਾਏ ਮੇਗਰੀ, ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰ, ਪੈ ਬਿਨ ਪਰਮ ਨਾ ਕੱਟੀਐ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਪ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਉ ਉਪਜੈ, ਪਾਈਐ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਪੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਈਐ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰ, ਪੈ ਤੇ ਪੈ ਜਲ ਲੰਘੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਪੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪਾਈਐ ਜਿਸ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਪੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਤੇ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਉਰ ਧਾਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰੂਪੈ ਕਾਮੈ ਦੋਸਤੀ, ਭੁੱਖੈ ਸਾਧੈ ਗੰਡ, ਲੱਭੈ ਮਾਲੈ ਕੁਲ ਮਿਚਲ, ਲੱਭੈ ਮਾਲੈ ਕੁਲ ਮਿਲ ਮਿਚਲ, ਉਂਘੈ ਸੋੜ ਪਲੰਘ, ਪੌਕੈ ਕੋਪ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਫੱਕੜ ਪਿੱਟੇ ਅੰਧ, ਚੁੱਪੈ ਚੰਗੈ ਨਾਨਕਾ, ਵਿਣਨਾ ਵੈ ਮੋਹਿ ਗੰਧ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਜਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ, ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਰੱਖੀ ਲੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਣ ਠੱਗ ਸੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ। ਹੋਰ

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौं बलबले हौं बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल, कानला महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचै लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ, हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जप ते उत्तम, तिन कहो हौ कुम कुमे कुम कुम जीस, हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करै जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस, कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मिल पज राम, बढ़ हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम, सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम, कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ, खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईऐ हर ब्रह्म जोग हर पाईऐ, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझै आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे, कट हर काट, कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रभ लादो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चितै बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सत गुरु गुर साधो, ज्यो शोहे पारस मनूर पए कंचन, त्यों पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुधादो, ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यों पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सत गुरु गुर साधो, चार बरन चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुरु नानक, सो आप तरह कुर सगल तरा दो, कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ, तेरे जन त्यावे एक मन एक चित, ते साधु सुख पावे, पज हर हर नाम निधान, उस्त करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनके हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावे, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक

नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेता, सोग नाही सदा हरखी है रे, छोड़ नाही किछ लेता, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भए तेह संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेउ तेउ गह रहे अटकाए, अनक पांत की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संत नहीं सरनाए, काटे अज्ञान परम हो माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग बिनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवनो, नाम हमारे प्राणाधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इशनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल बिखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ लाल।

स्वामी ने रो पेखत सुनत सबन कह संगे थोरे काज ब्रो कह फेरो रहाओ नाम बिना जेतो लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कहो नानक एक है पारो सौ बंधन काटन हार गुरमेरो कानड़ा महला पंजवा बिखै दल संतन तुमरै गाहयो तुमरी टेक भरोसा ठाकरो शरण तुम्हारी आयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राहित दर्शन पेट मिटाहयो पयो प्रगास अन दुजियारा सहि समा समाहयो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहयो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरै बिनसै मोह परम दुख पीरै रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत खत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेड़त नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मनै सुख पाई है साज जना मिल हर जस गाई है रहाओ कर कृपा प्रभुदय बसेरो चरण संदर के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जा सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रपरसन रसना हर हर भोजन तृप्तानी अखियन को संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दोग सगल मल हरसन पावन तावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूर्ण अविनाशी आनो पाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जन अपने अंध घोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोह कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरी आ रहाओ अहं मत अन रात कुमित हित प्रीतम पेखत भ्रम लाह गरिया अनित व्यवहार आचार विधहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोबिंद त्याग आन लागे अमृतो डार पूम पागे बिखैरा स्यो आसक्त मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लो व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अवलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरा सर्ब सो गोबिंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज हो नाम आराद गुर सतगुर चरनी लाग हर पाव मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविद खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की यह पुत्री जोरी क्या है कर्म करा कमास प्रभां पकर जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हाँ बल बल सत बल जास कानड़ा महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगते उदारण नाम प्रे तेरे नवनिध नाम निधान हर के रह हर रंग रंग रंग अनूपे रह काहे रे मन मोहे मगने रह नैनो देख सा दर्शे रह सो पावे जिस लिखत लले रह रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह बांछो तूर पवित्र करे रह अठ सठ मज्जन मैल कटे रह सास सास ते आवो मुख नहीं मोरै
किछ संग ना चालै लाख करोर है, प्रभ जी को नाम अंत पकरोर है। मनसा मान एक

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ, आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना, दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना, हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन, प्रभ पय है कृपेन, मान मोह त्याग छोड़ आओ तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ, बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख अर नंगा, पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खाटंगा, दर्शन भेटे बिन सत संगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा, हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा, सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवां, कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तिख बूज गई गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो, हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ, जैसी करी प्रभ मोसियो मोसियो, ऐसी हों कैसे कराऊं, हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई, पहले पै संत पाए, त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान थे रोके हरो, जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी, सोई मिलियो जो भाव तो, जन नानक ठाकर रहो समाए, एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवा, कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्यागी है गुमान मान पेखता दयाल लाल, हां हां मन चरण रेन रहाओ, हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, हृदय गोबिंद गाए चरण कमल प्रीत लाए, दीन दयाल मोहना कृपाल दया मया तार, नानक मांगे नामदान ताज मोह परम सगल अभमान। कानड़ा महला पंजवा, प्रभ कहन मलन दहन लहन, गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ, तटन खटन जटन होमन, नाही डंड धार सुवाओ, जतन पांतन तपन भ्रमन, अनक कथन कथते नहीं थहां पाई ठाओ, सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ। कानड़ा महला पंजवा, करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पतत पावन भगत पवचल, पै हरन तारन तरन रहाओ, नैन तिपते दर्श पेख, जस तोख सुनत करन, प्राण नाथ या नाथ दाते, दीन गोबिंद सरन, आस पूर्ण दुख बिनासन, गही ओट नानक हर चरण। कानड़ा महला पंजवा, चरण सरण दयाल ठाकर, आन नाही जाए, पतत पावन बिरद स्वामी, उधर ते हर त्याए रहाओ, संसार गार बेकार सागर, पतत मोह मान अंध, बिकल माया संग तंद, कर गह प्रभ आप काढ़ो, राख लियो गोबिंद राए, अनाथ नाथ सनाथ संतन, कोट पाप विनाश, मन दर्शन की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास, कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवा, वार वारो अनक डारो, सुख प्रे सुहाग पलक रात रहाओ, कनक मंदर पाठ सेज सखी, मोहे नाहे इन स्यों तात, मुक्त लाल अनक भोग, बिन नाम नानक हाथ, रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सुख बिहात। कानड़ा महला पंजवा, अहं तोरो मुख जोरो, गुर गुर करत मन लोरो, प्रे प्रीत प्यारो मोरो रहाओ,
ਗ੍ਰਹਿ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਆਂਗਨ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗ ਤੋਰੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗ ਸੋਰੋ ਛੁਟਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਰੋ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹਿਰੋ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਾਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰਤਾਪ ਰਹਾਓ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗ ਬੱਪਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰੈ ਜਿਸੈ ਉਧਾਰੋ ਆਪ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਪੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।

कर्ण लुभ आए अंत जाए, थान थन आए सर्व समाए, रसक रसक नानक गुण बोले, कानड़ा महला पंजवां। गोविंद ठाकर मिलन दुराई, परमित रूपा गामा गोचर, रहो सर्व समाई रहाओ, कहन पवन नाही पायो पायो, अनक उकत चतराई, जतन जतन अनक यो पावरे, तव मिलियो जो कृपाई, प्रभु दयार कृपाल कृपा निद, जन नानक संत रे नाई। कानड़ा महला पंजवा। माई सिमरत राम राम राम, प्रभ बिना नाही होर, चितवो चरनार बिंद, सासन निस्पोर रहाओ, लाए प्रीत कीन अपन, टूटत नहीं जोर, प्राण मन तन सर्व सो, हर गुण दे सुख मोर, ईत ऊत राम पूर्ण, निरखत रिद खोर, संत सरन तरन नानक, बिरस्यो दुख कोर। कानड़ा महला पंजवा। जन को प्रभ संगे असने हो, साजनो तू मीत मेरा, गृह तेरे सबके हो रहाओ, मान मांगो तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत देह, मुकत जुगत भुगत पूर्ण, परमानंद परम निधान, पै पाए भगत निहाल नानक, सदा सदा कुर्बान। कानड़ा महला पंजवां। करत करत चर्च चर्च अहंचरी, करत करत चर्च चर्च चरचरी, जोग ध्यान पेख ज्ञान, फिरत फिरत तरत तरत तरचरी, रहाओ अहं अहं अह अवर मूड मूड मूड बवरई, जत जात जात जात, सदा सदा सदा काल है, मान मान मान त्याग, मृत मृत निकट निकट सदा है, हर हरे हरे पाज, कहत नानक सुनोरे मूड, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदियां महला चौथा, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जप मन, राम नाम सुख पावै गो, ज्यो ज्यो जपै त्वै सुख पावै, सतगुर सेव समावै गो रहाओ, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावै गो, अनरस साध गए सब निकर, बिन नामै किछ ना सुखावै गो, गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे भजन कढ़ावै गो, सतगुर बाणी पुरख पुरखोत्तम, बाणी सो चित लावै गो, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आ।

रस रसक घटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै, मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै, धावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर यत फीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख न पीजै। चंदन वास भयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै। काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पसम करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकीने, मिल साधु लूकी दीजै। साधु साधु साध जानी के, जिनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखीजै। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों करता अंत नीजै। तंत सूत किशनिक सह नाही, साक्त संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिले मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा। रामा राम रामो राम रवीजै, साधु साधु साध जानी के, मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख ज्योत भली सिवनी की, आन पानी सख्त परीजै। मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अन गुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिन सिरन किए, हर सगल भवन जस दीजै। साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जाय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जगनहारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंध ना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिले वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूढ़ो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्ट करो मूर्ख जग कहिया अदक बको तेरी लिव रहिया। भूल चूक तेरा दरबार नाम बिना कैसे आचार ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदा मुझे प्यारा रहाओ। जिस निंदे सोई बिद जाने गुर कै सबदे दर निशाने कारण नाम अंतरगत जाने जिसनो नजर करे सोई बिद जाने। मैं मैल उजल सच सोए ऊतम आखना उच्चा होए मन मुख खूल महाबिख खाए गुरमुख होए सोरा चैन आए अंधो बोलो मुग्ध गवार हीणो नीच बुरो बुरो यार। नी तन कहो तन नाम प्यार एहो तन सार होर बिखिया शार उस्तत निंदा शब्द विचार जो देवै तिसको जयकार तू बख्शै जात पत होए नानक कह कहावै सोए। प्रभाती महला पहला खाया मैल वधाया पैदा कर की हान बक बकवा चलाया बिना मैं बिख जान। बाबा ऐसा बिखम जाल मनवासिया बिबल चाग सहज परगासिया रहाओ। बिख खाना बिख बोलना बेकी कार कमाए जमदर बादे मारी है छूट सच है नाए। जिव आया तिव जाए सी किया लिख लै जाए मन मुख मूल गवाया दरगह मिलै सजाए। जग खोटो सच निर्मलो गुर सबदी विचार ते नर विरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार। अजर जरै नीजर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल कौ मीन सै थै पावै राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला गीत नाद हरख चतराई रहस रंग फुरमाए सकाई पैनन खाना चीत ना पाई साच सहज सुख नाम वसाई। क्या जाना क्या करै करावै नाम बिना तन किशना सुखावै रहाओ। जोग बिनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोबिंदा कीर्त कर्म कार निज संदा अंतर रवतो राज अरविंदा। प्रयो प्रयो प्रीत प्रेम और तारी दीना नाथ पियो बनवारी अन दिन नाम दान प्रतकारी त्रिपत तरंग तत् बिचारी। अकथो कथो क्या मैं मोर अकथो कथो

गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत वंतर डीठा, जिन चाख्या पूरा पद होए, नानक त्राप्यो तन सुख होए, प्रभाती महला पहला। अंतर देख शब्द मन मानिया, अवरना रंग नहारा, एनस जिया देख संभाले, तिस ही की सरकारा, मेरा प्रभ रांकण अतरूढ़ो, दीन दयाल प्रीत मन मोहन, आतरस लाल सगूढ़ो रहाओ, ऊपर कूप गगन पनिहारी, अमृत पीवन हारा, जिसकी रचना सोबित जाने, गुरमुख ज्ञान विचारा, पसरी किरण रस कमल बेगासे, सस्कर सूर समाया, काल विध्वंस मनसा मन मारी, गुर प्रसाद प्रपाया, आत रस रंग चलू लै राती, दूजा रंग ना कोई, नानक रसन रसाए राते, रव रया प्रभ सोई। प्रभाती महला पहला, बारह मैं रावल खप जावै, चौछे मैं सन्यासी, जोगी कापड़िया सिर खूथे, बिन शब्द है गल फासी, शब्द रते पूरे बैरागी, औ हठ हस्त मैं पीख्या जाची, एक भाए लिवलागी रहाओ, ब्राह्मणवाद पढ़े कर किरिया, करनी कर्म कराए, बिन बूझे किछ सूझै नाही, मनमुख विछड़ दुख पाए, शब्द मिले से सुचाचारी, साची दरगह माने, अनदिन नाम रतन लिव लागे, जो जुग साज समाने, सगले कर्म धर्म सुच संजम, जप तप तीर्थ शब्द वसे, नानक सदगुर मिलै मिलाया, दुख प्राहित काल नसे, प्रभाती महला पहला। संता की रेण साध जन संगत, हर कीर्त तरतारी, कहां करे बपरा जम डर पै, गुरमुख हृदय मुरारी, जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरमुख आवे साध मना रहाओ, गुर उपदेश साच सुख जा कहो, क्या तिस उपमा कही है, लाल जवेहर रतन पदार्थ, खोजत गुरमुख लही है, चीने ज्ञान ध्यान तन साचो, एक शब्द लिव लावै, निरालंब निरहार निह केवल, निरपौ ताड़ी लावै, सायर शब्द भरे जल निर्मल, उल्टी नाम तरावै, बाहर जातो ठाक रहावै, गुरमुख सहि समावै, सो गिरही सो दासो दासी, जिन गुरमुख आ पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, साच शब्द मन मानिया। राग प्रभाती महला तीजा, चौपदे एको अंकार, सतगुर प्रसाद, गुरमुख विरला कोई बूझै, सबदे रहया समाई, नाम रते सदा सुख पावै, सच रहै लिवलाई, हर हर नाम जपो जन पाई, गुर प्रसाद मन अस्थिर होवै, अंदन हरस रहया अगाई रहाओ, अन दिन भगत करो दिन राती, इस जुग का लाहा पाई, सदा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम चितलाई, सुख सिंगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई, अखुट भंडार भरे, कदे तोट ना आवै, सदा हर से वो पाई, आपे करता जिसनो देवै, तिस वसै मन आई, नानक नाम त्याय सदा तू, सतगुर दिया दिखाई। प्रभाती महला तीजा, निर्गुण यारे को बख्श लै स्वामी, आपे लहो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, सबदे देहो बुझाई, हार जियो तुद विटो बल जाई, तन मन अर्पी तुद आगै रखो, सदा रहा सरनाई रहाओ, अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो देह वड़ियाई, पूरे गुरते पाणा जापै, अंदन सहि समाई, तेरे पाणै भगत जे तुद पावै, आपे बख्श मिलाई, तेरे पाणै सदा सुख पाया, गुर तृष्णा अग्न बुझाई, जो तू करै सो होवै, करते अवर न करना जाई, नानक नामै जेवड़े अवर न दाता, पूरे गुरते पाई। प्रभाती महला तीजा,
ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਸਾ ਲਹਾਇਆ ਜਿੰਨਾ, ਤਿਨ ਸਲਾਏ ਹਰ ਜਾਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਗਇਆ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਕ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਜਪੀ ਤੁਦੈ ਸਾ ਲਾਹੀ, ਗਤ ਮਤ ਤੂੰ ਤੇ ਹੋਈ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾ ਲਾਹਨ ਸੇ ਸਾਧ ਪਾਇਨ, ਮੀਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਸਦਾ ਮੀਠਾ ਕਦੇ ਨਾ ਫੀਕਾ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਤਿਸ ਵਿਟੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਸਚ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਜੀਓ, ਤਿੰਨ ਤੂੰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ, ਤੋ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਜੈ, ਨਾ ਕੋਹਵਾ ਨਾ ਹੋਗ।

जन नानक हर प्रभ एक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर, हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा, बिख डुबदे बहदे कडबा। जप मनो राम नाम अर्धम्बा, उपजंपो पाए न पाइए कतहूं। गुरपूरै हर प्रभ लाभा रहाओ। राम नाम रस राम रसायण, रस पिया गुरमत रसबा। लोह मनूर कंचन मिल संगत, हर उर तारियो गुर हरबा। हाँ मैं बिखिया नित लोभ लुभाने, पुत कलत मोहे लुभबा। तिन पग संतन सेवे कभू, ते मनमुख पूंबर परबा। तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो, हम परे हार तुम शरण बा। ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी, जन नानक दास तुम नवा शका एक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप मानो हर हर नाम निधान, हर दरगह पावे मान। जिन जपया ते पार प्राण रहाओ। सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान, सुन मानो हर कीर्त अठसठ मजान। सुन मन गुरमुख पावे मान, जप मन परमेश्वर प्रधान। खिन खोवे पाप कोटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवां विभास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रजोत निवाजिया। सहजा तरत बर्तन कौ पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते, हर सोग ते रह निरारा। ता तू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटुंब सगल बनाए। रिजक समाहे जल थन मीत, सो हर सेवो नीता नीत। तहां सिखाई जै कोय ना होवै, कोट अपराध एक खिन में तोवै। दात करै नहीं पछोतावै, एका बख्स फिर बहुर ना बुलावै। किरत संजोगी पाया पाल, साध संगत में बसे गोपाल। गुर मिले आए तुमरै द्वार, जन नानक दर्शन देहो मरार। प्रभाती महला पंजवां, प्रभ की सेवा जन की शोभा। काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै पंडार। गुण गावै प्रभ दर्श प्यार, तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई। काट जेवरी जन लिए छडाई रहाओ। जो जन दाता प्रभ कै रंग, तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जन, पेख पेख मन में हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निश्चलिया वै ना जाए, अंदर प्रभ के हर गुण गाए। ता को करो सगल नमस्कार, जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा, नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवां, गुण गावत मन होए आनंद। आठ पैर सिमरो भगवंत, जा कै सिमरन कलमल जाहे। तिस गुर की हम चरनी पाहे, सुमत देवो संत प्यारे। सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइय, हर सिमरन जिस गुर ते पाइय। बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया, जिस प्रसाद मोह नहीं माया। हालत पलत जिन गुरै सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुगते किया ज्ञानी, गुर पूरे की कथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरदेव, वड़े पाग पाई है हर सेव। प्रभाती महला पंजवां, सगले दुख मिटे सुख दिए। अपना नाम जपाया, कर कृपा अपनी सेवा लाए। सगला दुर्त मिटाया, हम बारक शरण प्रभ दयाल।
अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुरु गोपाल रहाओ। ताप पाप बिनसे खिन पीतर पय कृपाल गुसाई सास सास पार ब्रह्म आराधी अपने सदगुर कै बल जाई। अगम गोचर बेअंत स्वामी ताका अंत ना पाई है लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु त्याई है। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिक सब नासे सच नाम गुरदीनी रासे प्रभ की दरगह सो बावंते सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोग सब बिनसै अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ। जन्म मरण गुर राखे मीत हर के नाम स्यों लागी प्रीत कोट जन्म के गए कलेश ज्योतिष पावे सुफल होस तिस गुर कहो सदा बन जाई जिस प्रसाद हर नाम ते आई ऐसा गुर पाई है वडभागी जिस मिलते राम लिव लागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल घटा के अंतर जामी। आठ पहरे अपनी लिव लाए जन नानक प्रभ की शरण आए। प्रभाती महला पंजवा कर कृपा अपने प्रभ की हर का नाम जपन कौ दिए। आठ पहर गुण गाए गोबिंद पै बिन से उतरी सब चिंद उबरे सतगुर चरणी लाग जो गुर कह सोई पल मीठा मन की मत त्याग रहाओ। मन तन वस्या हर प्रभ सोई कल कलेश किश विघन ना होई सदा सदा प्रभ जी कै संग उतरी मैल नाम कै रंग चरण कमल स्यो लागो प्यार बिन से काम क्रोध हंकार। प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर स्यो मन माना सुन सज्जन संत मीत सुहेले नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निद गाई है कहो नानक वडभागी पाई है। प्रभाती महला पंजवा से धनवंत से ही सच साहा हर की दरगह नाम विसाहा हर हर नाम जपो मन मीत गुरपुरा पाईए वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाओ। पाया लाभ वजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान। बिन से काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उत्तर सपार। प्रभाती महला पंजवा गुरपुरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा सद अटला गुर की बाणी जिस मन वसै दुख दर्द सब ता का नसै हर रंग राता मन राम गुण गावै मुक्तो साधु तुरी नावै रहाओ। गुर प्रसादी उतरे पार पौ परम बिन से बेकार मन तन अंतर बसे गुर चरना निरपै साध परे हर सरना आनंद सहज रसूक नेरे दुश्मन दुख ना आवै नेरे गुरपुर अपने कर राखे हर नाम जपत किलबिख सब लाथे संत साजन सिख पए सुहेले गुरपुर प्रभ स्यो लै मेले जन्म मरण दुख पहा काटिया कहो नान गुर पड़दा ढाकिया। प्रभाती महला पंजवा सतगुर पूरे नाम दिया आनंद मंगल कल्याण सदा सुख कार्ज सगला रास्थिया रहाओ। चरण कमल गुर के मन उठे दुख दर्द परम बिन से झूठे नित उठ गावो प्रभ की बाणी आठ पैर हर सिमरो प्राणी घर बाहर प्रभ सबनी थाई संग सहाई जय हो जाई। दोय कर जोड़ करी अरदास सदा जपे नानक गुणतास। प्रभाती महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ सूड सुजान गुरपुरा पाईए वडभागी दर्शन कौ जाइए कुर्बान रहाओ। किलबिख मेटे शब्द संतोख नाम आराधन होवा जोग साध संग होवा प्रगास चरण कमल मन माए निवास जिन किया तिन लिया राख प्रभ पूरा अनाथ का नाथ
ਜਿਸੈ ਨਵਾਜੇ ਕਿਰਪਾ।

क्रूर दृष्टरता निस्बादं रहाओ। नित प्रत इशनान शरीरं दोय धोती कर्म मुख खीरं हृदय श्री संध्यानी पर दर्भ हरण की बानी। सेल पूजसो चक्र गणेशं निसजागत निसजागस भगत परवेशं पग नाचस चित अकर्मं एलंपट नाच धर्मं। मृग आसन तुलसी माला कर उज्जल तिलक कपाला हृदय कूड कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं। जिन आत्म तत् ना चीनिया सा फोगट धर्म अबीनिया। कहो बेणी गुरमुख त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग जय जयवंती महला नावा राम सिमरो एह तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ। सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान। बारू की पीत जैसे बसदा को राज है। नानक जन कहत बात बिनस जह तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा राम भज जन्म सिरात है। कहो कहां बार बार समझत न क्यों गवार। बिनस

ए कृष्णं ता सर्वदेवा देव देवा ता या तो मैं आत्मं श्री वास देवस जे कोई जान सपेव नानक ता को दास है सोई निरंजन देव। श्लोक सहस कीर्ति महला पंजवा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता बिनोद सुतै कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कुटुंबियते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोत अरहंत संग भगवान सिमरन। नानक लब्ध्यं अचत तने त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवै त्रिग स्नेहं बंता बिलास सुतै त्रिग स्नेहं गृहार्थ कह साध संग स्नेह सत्यं सुखयं बसंत नानक। मिथ्यंत देहं खीणंत बलं वरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा आथित पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ देहं तत आश्रयं नानक। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटंग रचंत दोयं लेपनंग रक्त चरमण है नवंत द्वारंग पीत रहतंग बाय रूपंग अस्तंभन है। गोविंद नामंग नय सुमरंत अज्ञानी जानंत अस्थरंग दुर्लभ देह उदरंत साध शरण नानक। हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत तोयंग अच्युत गुण अज्ञंग पूर्णंग बहुलो कृपाला। गंभीरं ऊचे सर्वज्ञ अपारा प्रत्याप्रं विश्राम चरणं अनाथ नाथे नानक शरणं। मिर्गी मिर्गी पेखंत बद्धक परहारेण लखयावदै अहो जासर खेण गोपालै नानक रोमना छेदयते। बहु जतन करता बलवंत कारी सिवंत सूरा चतर दिसै बिखम थान बसंत ऊचै न समरंत मरण कदांच। होवंत आग्या भगवान पुरख नानक कीटी सास्या करखते सबदंग रतंग हितंग माया कीर्तन कली कर्म कृतवा मिटंत तत्रागत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं। दृष्टत्वं अमोग दर्शनं बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रयंग जाप जपना। कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत रव सस्यर नक्षत्र गगनं कटंत बसदा गिर तर से खंडं कटंत ललना सुद प्रात हीतं कटंत कनक मानक माया स्वरूपं। नह कटंत केवल गोपाल अच्युत अस्रंग नानक साध जान। नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किलबिखनासं प्रावतं तर्म लखन। नानक जे सो प्रसन्न माधव मृत मोहं अल्प बुद्धियं रचंत बनता विनोद साहं। जोबन बहक्रम कनक कुंडल बचित्र मंदर सोभंत बस्त्रा इत्यंत माया व्यापतं। हे अच्युत शरण संत नानक हो भगवान ए नमः। जन्मं ता मरणं

परिवर्त मार्गं वर्तन्त विनाशनं गोविंद भजन साध संगेण अस्थरं नानक भगवंत भजनासनं कृपंता हरियं मत तत् ज्ञानं विकसित बुद्धा कुशलथानं बस्यंत रखियं त्यागमानं बस्यंत रखियं त्यागमानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं अरहंत जन्मं हर दर्श लीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेदा गुणंत गुणिया सुनंत बाला बहुविध प्रकारा दृढ़ंत सुविद्या हर हर कृपाला नाम दान जा चंत नानक दैन हर गुरु गोपाला नह चिंता मात पित प्रात नह चिंता कश लोक कै नह चिंता बंता सुतमीत प्रवृत माया संबंधन है दयाल एक भगवान पुरख है नानक सर्व जी प्रतपाल कै अनित वितं अनित चितं अनित आसा बहुविध प्रकारं अनित हेतं अहं बंदं परम माया मलनं बेकारं फिरंत जोन अनेक जठरागन नै समरंत मलीन बुद्धियं हे गोविंद करत माया नानक पत ते उदाहरण साध संग मैं गिरंत गिर पत पातालं जलंत दे दीप बै स्वंतर भांता गह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं ता मरण अनक साधनं ना सिद्धिया ते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध सवजन कोर दुखियं अनकहत्यं जन्म दारिद्रं महाबिख्यादं मिटंत सगल समरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत अंधकार सिमृत प्रकाशं गुणर मंत अग खंडन हरिद बसंत पै पीत दूत कर्म करत महा निर्मल जन्म मरण रहंत स्रोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रे नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वै निरासं आस पूर्ण निर्तन पयं तन मंत रोगियं रोग खंडन भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दा तार नानक गुर सेवा किंग ना लभ्या ते अतरंग तरंग तारण निरतनंग तन नाम नर हर अनाथ नाथ गोविंद बलहीन बल केशव सर्वभूत दयाल अच्युत दीन बांधवदा मोदर सर्वग पूर्ण पुरख भगवान भगत वच्छल करनामय घट घट बसंत बास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जाचंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम परखोत्मं तव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं परण पोखण करंत जिया विश्राम शादन देवंत दानं सृजंत रत्न जन्म चतर चेतन वर्तंत सुख आनंद प्रसाद सिमरंत नानक हर हर हरे अनित रचना निर्मोहते दानं पराबूर बेण पुचंते मही पते विपरीत बुद्धियं मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते बिरथा अनुग्रं गोविंद जस सिमरन रिदंत।

पीवतं संतना तृपते सहनशील संतं सम्मित्रस दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान पंगन शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन गोविंद नाम जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बसन सैना साध समूह सूरज तंग सन्नाहं तन्यमृता आवदे गुण गोविंद रमणं ओट गुर शब्द कर चरमण आरूढ़ ते अश्वरथ नाग बुजंते प्रमार गै विचरते निर्भयं सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन जित ते विश्व संसार नानक वस्यं क्रोध पै तस्कर मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत ततः कुटाम्ब मोह मिथ्या स्मरंत नानक राम राम नाम नच विद्या निदान निगमं नच गुणग नाम कीर्तन नच रागरतन कंठं नह चंचल चतर चतर भाग उद्यम लभद्यंग माया नानक सा संग खल पंडित कंठ रमणी राम राम बाला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नै नंदनी गुरमंत्र हीन अस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन कुकरै सुकरै गर्भ दै काकै सर्पनै तुल खलै चरणार बिंद भजनं हृदयंग नाम धारण कीर्तनं साध संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतन नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजन नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अंबर नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधव नच दुर्लभं बंता बिलास नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नच दुर्लभं चतर चंचल दुर्लभं एक भगवान नाम नानक लभद्यं सा संग कृपा प्रभं जत कतै ततै दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकै सर्वत्र रमणं गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्या ते बिखिया पयंत अमृतं दृष्टा सखा स्वजन दुखं पयंत सुखियं पै पी पंत निर्भय थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर सर्वशील ममंगशीलं सर्व पावन मम पावन सर्व कर्तव ममंग कर्ता नानक लेप शेप न लिप्यते नह शीतलं चंद्र देव नह शीतलं बामन चंदन नह शीतलं शीतरुतेण नानक शीतलं सास्वजन मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित उपदेशं सम्मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा न स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेण कै खट लखन पूर्णं पुरख है नानक नाम साध स्वजन अजा पोगंत कंद मूलं बसंते समीप केहर तत्रगते संसार नानक सोग हरखं व्यापते छलं शद्रं कोट बेगनं अपराधं किल बखमलं परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापतं मृत्यो जन्म प्रमंत नरक अनक उपावं न सिद्ध्यते निर्मलं साध संग है जपंत नानक गोपाल नामं अरमंत गुण गोविंद नित प्रत तरण तरण सरण स्वामी
रमणशील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रपूर्ण है, निराश आस करणं सगल अर्थ आले है, गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक है, दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्व सुखण है, दुर्वचन भेद परमं साकत फसनंत सुरजन है, अस्थतं सोगहरखं पै खीणंत निर्भव तय अटवियं महानगर वासं धर्म लखण प्रमया, साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं, हे अजित सूर संग्रामं अत बल ना बो मर्दन है, गण गंधर्व देव मानुख्यं पशपंखी बेमोहन है, हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है, हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी प्रमावण है, चित हरणं त्रैलोक गम्यं जप तपसील विदारण है, अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण है, तव पै विमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण है, हे काल मूल क्रोधं कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवं वस्यं क्रोत निरत्यं क्रोत जथा मरकट है, अनक शासन ताड़ंत जम दूत है, तव संगे अदमं नर है, दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत, हे लोबा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते, नच मित्रं नच हिष्टंग नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया, अकरण क्रोत अखाद खाद्यं असा जिंग साज समझिया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हर है, हे जन मरण मूलं हे जन मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत, अनक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख वो बहुगण परम प्यान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगण है, वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे, हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगद गुरु, हे संसार ताप हरण है करुणा मह सब दुख हरो, हे शरण योग दयाल है दीनानाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है, चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है, साध संगेण तरणं नानक महासागर पैद उत्तर है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है, भगत वचला नाथ नाथे शरण नानक पुरखा चुत है, जैन कला तारियो आकाशं बैसंतरं काष्ट बेष्टं, जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियं सासं शरीर तारणं, जैन कला मात गर्व प्रतिपालं नैच जंत जठर रोगण तेन कला अस्थंबं सरोवरं नानक नहश जंत तरंग तोयण, गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन लब्धं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतन, मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कै सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंध कै, साध संगेण सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे, तिलकहीणं जथा विपरा अमरहीणं जथा राजन आवदहीणं जथा सूरा, नानक धर्महीन तथा वैष्णव है, ना शंखं ना चक्रं ना गदा ना श्यामं आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद है, बसंत साध हृदयं अचत बुझंत नानक वट भागी है, उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खरै, बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाद पंच तस्कर है, हीत मोह पै परम परमणंग अहु फांस दीखण कठन है, पावक तो असाध कोरंग अगम तीर नय लंगन है, पज साध संग गोपाल नानक
ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਉਧਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਸਗਲਿਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਣ ਹੈ ਸਾਹ ਸੰਗੇਣ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਸਿਆਮਲੰਗ ਮਦਰ ਮਾਨੁਖ ਅੰਗ ਹਿਰਦਿਅੰਗ ਭੂਮ ਵੈਰਣ ਹੈ ਨਿਵੰਤ ਹੋਵੰਤ ਮਿਥਿਆ ਚੇਤਨੰਗ ਸਵੰਤ ਸਵਜਨ ਹੈ ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨਾ ਜਾਣੰਤ ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇਸ਼ ਜੰਤ ਮਹਾਸੁੰਦਰੀ ਕਾਇਆ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ਰਾਸਤੇ ਹਰਚੰਤ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ ਅਨਿਤ ਆਸਾ ਵਿਖਿਆ ਬਿਨੋਦ ਪਰਮੰਤ ਪ੍ਰਮੰਤ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾਮਯ ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਦਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋਯੰਗ ਸਤ ਹਤੰਗ ਪਰਮ ਬਾਦੰਗ ਅਵਰਤ ਏਥੈ ਸੁਧ ਅਛਰਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ ਗਰਬੰਤ ਨਾਰੀ ਮਦੋਨ ਮਤੰਗ ਬਲਵੰਤ ਬਲਾਤ ਕਾਰਣ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਹਿ ਭਜੰਤ ਤਰਨ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮਨੈ ਹੇ ਪਪੀਲ ਕਾ ਗ੍ਰਹਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਤੋਯੰਗ ਧਨੇ ਨਾਨਕ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਮੋ ਨਮੈ ਤ੍ਰਿਣੰਗਤਾ ਮੇਰੰਗ ਸਹਿਕੰਗਤਾ ਹਰਿਯੰਗ ਬੂਡੰਗਤਾ ਤਰਿਯੰਗ ਊਣੰਗਤਾ ਭਰਿਯੰਗ ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰੰਗ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਦਯਾਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੰਗ ਉਦਰਣੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਨ ਆਤਮ ਰਤੰਗ ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲੈ ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਘਨ ਕਰਨੰ ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀ ਕੈ ਲਾਓ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤਿਪਤ ਮਨ ਮਾਏ ਕਰਮ ਕਰਤ ਸਾਸੂ ਕਰੈ ਮਤੇ ਸਮੇਵ ਚਰਣੰ ਉਦਰਣੰ ਪੈ ਦੁੱਤਰੈ ਅਨੇਕ ਪਾਤਕ ਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨਾ ਸੰਸਿਐ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਾਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥਗਰ ਬੇਣ ਅਗਿਆਨਣੋ ਪਰਮਾਣੋ ਪਰ ਜੰਤ ਆਕਾਸੈ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣੈ ਗਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਪਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਿਆ ਤੇ ਜਾਣੋ ਸਤ ਹੋਵੰਤੋ ਮਰਨੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਣ ਮਿਥਿਆ ਕੀਰਤ ਸਾਥ ਚਲੰਥੋ ਪੜੰਤ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਪਰਮੇਣ ਇਸ਼ਟ ਮਿਤਰੇਖ ਬਾਂਧਵੈ ਲਬਧਿਅੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੋਖਿਆ ਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਲਬਣਿਅੰ ਲਬਧਿਅੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਮੈ ਲਾਗਰ ਸੰਗੇਣ ਨਿਮ ਬਿਰਖ ਸੇ ਚੰਦਨੈ ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੋ ਬਾਂਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਨਾ ਬੋਹਤੇ ਗਾਥਾ ਗੁੰਫ ਗੋਪਾਲ ਕਥੰ ਮਥੰ ਮਾਨ ਮਰਦਨੈ ਹਤੰ ਪੰਚ ਸਤਰੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਾਣੇ ਪਰਹਾਰਣੈ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਲਹੰਥਾ ਬੜ ਕਰਮਣੈ ਅਰਹੰਤਾ ਜਨਮ ਮਰਣੇਨ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀਰਤਨੈ ਪੱਤਰ ਪੁਰ ਜੇਣ ਝੜੀਅੰ ਨਹਿ ਜੜੀਅੰ ਪੇੜ ਸੰਪਤਾ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਬਿਖਮਤਾ ਨਾਨਕ ਬਹੰਤ ਜੋਨ ਬਸਰੋ ਰਹਿਣੀ ਭਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਲਬੰਤੰ ਬੜ ਭਾਗਣੈ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੈ ਵਿਆਪਣੈ ਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਪਾਰੰ ਸਮਝਣੰ ਬਿਰਲਾ ਜਨੈ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਣੰ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਮੈ ਸੁਮੰਤਰ ਸਾਧ ਬਚਨਾ ਕੋਟ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨੈ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨੰ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਣੈ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੈਣੈ ਜੇਣ ਮੱਧ ਹਰ ਕੀਰਤਨੈ ਮੁਕਤੇ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦੈ ਨਾਨਕ ਲਬਧਿਅੰਗ ਬਡ ਭਾਗਣੈ ਹਰ ਲਬਧੋ ਮਿੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤੋ ਬਿਦਾਰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚਿੱਤੋ ਜਾਂ ਕਾ ਅਸਥਲ ਤੋਲ ਅਮਿੱਤੋ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸਖਾ ਜੀ ਸੰਗ ਕਿੱਤੋ ਅਬਜ ਸੰਗ ਮਿਟੰਤ ਸਤ ਪੁੱਤਰੈ ਸਿਮਰਤਾ ਬਰਦੈ ਗੁਰਮੰਤਰਣੈ
प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण मरणंग बिसरणंग गोविंद जीवणंग हर नाम त्यावण लबणंग साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण दसन बिहून पुयंगं मंत्रंगारड़ी निवारं व्याद्योपण संतं नानक लब्ध कर्मण जाथ कथ रमणं सरणं सर्वत्र जियण तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुरदर्शन चरणार बिंद मन विद्यं सिद्ध्यं सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक पब्यं परा पूर्वण शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेण उदरण संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्या ते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुले समूह सगले उदारं वडपागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहन लब्ध्यं साध संगेण नानक वडपागी पेटंत दर्शन सर्व दोख परं त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतन लब्धेन साध संगेण नानक मस्तक लिखण होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्म जानो नानक प्रीत कारणं सुखैन बैन रत्नं रचनं कुसुम्बरंगण रोग सोग बेयोगं नानक सुख ना सुपन फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती उसत कहण ना जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा मैं बैस के कीर्त मैं कहा अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब देवा आस पिया सीसेज सोकंत विशाई है हर हा मस्तक होवे भाग ता साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सबे के साजिया सोलै किए सिंगार के अंजन पाजिया जे कर आवे कंत ता सब किश पाई है हर हा कंत बाज सिंगार सब बिरथा जाई है जिस घर वसिया कंत सावड भागणे तिस बनिया हब सिंगार साई सुहागणे हौ सुती होया चिंत मन आस पुराइया हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाईया पाईया आस आईती आस के आस पुराइया सतगुर पै दयाल ता पूरा पाईया मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर पै दयाल ता मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तरे हो संसार सतगुरु तराया मिटया आवा गौण जा पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया मेरे हाथ पद्म आंगन सुख बासना सखी मोरे कंठर तन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नव निद बसै जे सदा कर परतरे रावण जाहे सेई ताला जिया नित प्रत हिरै पर दर्ब शिदर कद ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बने आकाश तले तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख जोहती खोजत फिरो बदेश पियो कत पाईऐ हर हां जे मस्तक होवै भाग तां दर्श समाईऐ डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहिया बदो पुरख बिधातै तां तू सोहिया वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हां
ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹੇ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿਤ ਸੋ ਚਿਤ ਸੋ ਸਾਜਨ ਚਾਹੀਐ ਜੇ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸੈ ਕੋ ਵਾਹੀਐ ਬਨ ਬਨ ਫਿਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਣੇ ਹਰ ਹਾਂ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਣੇ ਮਿਤ ਕਾ ਚੇਤਾ ਨੂੰ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਗਾਹਕ ਗੁਨੀਆ ਪਾਰ ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨੀਐ ਚਿਤੈ ਚਿਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੈ ਰੰਗ ਘਨਾ ਹਰ ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰੈ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਾਵੈ ਸਚ ਤਨਾ ਸੁਪਨੈ ਉਬੀ ਪਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਰਾਇਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਐ ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਉ ਪਾਈਐ ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨਹੀ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾਨਾ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ ਹਰ ਹਾਂ ਜਬ ਬਿਸਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੱਟੀਐ ਪੰਕਜ ਫਾਥੇ ਪੰਕ ਮਹਾਮਦ ਗੁੰਫਿਆ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਜਾਏ ਬਿਸਰ ਤੇ ਸੁੰਫਿਆ ਹੈ ਕੋ ਐਸਾ ਮੀਤ ਜੇ ਤੋਰੈ ਬਿਖਮ ਗਾਂਠ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਧਰਨਾਥ ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਲੇ ਸਾਂਠ ਤਾਵੋ ਦਸਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਣੇ ਪੰਚ ਸਤਾਵੈ ਦੂਤ ਕਮਨ ਬਿਦ ਮਾਰਣੇ ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਕਾਤ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਖੁੱਟਈ ਖਾਵੋ ਪੁੰਚੋ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਸਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਅਰਾਧ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਭਗਤ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਗਲੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਾ ਜੀ ਕਰਨ ਜੈਕਾਰ ਨਿੰਦਕ ਮੋਏ ਪਚ ਸਾਜਨ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਤੈ ਨਹੀਂ ਸੇਵੀਐ ਝੂਠੈ ਰੰਗ ਖੁਆਰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਖੇਵੀਐ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਪੇਖ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਜੇ ਦਰ ਗਹਿ ਜਾਣਿਆ ਕੀਨੇ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ਗਵਾਰ ਬੇਕਾਰ ਕਹਨ ਮਹਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਤਵਾਸ ਸੱਠ ਕਾ ਸ਼ਾਰ ਤਨ ਫਿਰ ਤੋ ਗਰਭ ਗੁਬਾਰ ਮਰਨ ਜਾਨੈ ਹਰ ਹਾਂ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਪੇਖ ਕਾਹੇ ਸੱਚ ਮਾਨੈ ਜਿਸ ਕੀ ਪੂਜੈ ਔਦ ਤਿਸੈ ਕੌਣ ਰਾਖਈ ਵੈਦਿਕ ਅਨਪਿਉ ਪਾਪ ਕਹਾਂ ਲਉ ਭਾਖਈ ਏਕੋ ਚੇਤ ਗਵਾਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਆਵਈ ਹਰ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤਨਸ਼ਾਰ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਵਈ ਔਖਦ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਕ ਪੀਜਈ ਮਿਲ ਮਿਲ ਖਾਵੈ ਸੰਤ ਸਗਲ ਕਉ ਦੀਜਈ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਿਸੈ ਹੀ ਪਾਵਣੇ ਹਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਜੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਵਣੇ ਵੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਹਰ ਹਾਂ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸਭ ਪਾਪ ਤਨ ਤੇ ਖਿਸਰਿਆ ਚਉ ਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਮਨ ਜਉ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਹੋ ਹੋਤੀ ਸਾਟ ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕਨੈ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨ ਖਚ ਰਹਿਆ ਬੀਚ ਨਾਰਾਈ ਹੋਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਬੇਦਿਓ ਬੂਜਨ ਸੁਰਤ ਸੰਜੋਗ ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਬਨ ਨਵ ਖੰਡ ਬਸਦਾ ਪਰਮ ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮ ਕੈ ਗਨੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੋ ਅੰਬਰ ਛਾਏ ਬੀਂਦੇ ਬਾਂਦੇ ਕਮਲ ਮੈਂ
पवर रहे लपटाए, जाप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब, मूसन मर्म ना जान नहीं मर्त हिरत संसार, प्रेम प्रम ना बेदेओ उर्जो मिथ व्यवहार, कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल, जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहूं जाहे, लख काटी ऊंचो कनौ चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल, कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार, मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगा दी सगल भगत ताको सुख विश्राम, कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार, कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो, कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिनमन नाही नाओ, कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखो तत सोए, कबीर जा दिन हो मुआ पाछ पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद, कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए, कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उन कीनो आदेश, कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कह बुरो न माने कोए, कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत, कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास, कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए, कबीर दीन गवाया दुनि स्यो दुनि ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ, कबीर जय जय हों फिरयो कौतक ठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए, कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ, कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए, कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान, कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार, जिन बिलोया तिन खाया अवर बिलो बनहार, कबीर माया चोरटी मुस मुस लावे हाट, एक कबीरा नाम से जिनकीनी बारे बाट, कबीर सुख ना एह जोग करे जो बहुत है मीत, जो चित राखे एक स्यों ते सुख पावे नीत, कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद, राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पट नहीं पारखू नहीं गाक नहीं मोल, कबीर तास्यों प्रीत कर जाको ठाकर राम, पंडित राजे पूपती आवे कौने काम,
कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए, पावे लांबे केस कर पावे कर रमोड़ाए। कबीर जा काजर की कोठरी अंध परे तस्माहे, हम बलिहारी तन कहो पैस जो निक सजाहे। कबीर यहो तन जाएगा सको ता लेहो बहोर, नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोर। कबीर यहो तन जाएगा कवने मार्ग लाए, कह संगत कर साध की कह हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पीना जानिया कोए, ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए। कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए न बारे बार, ज्यो बन फल पाके पोए ग्रह बहुर न लागे डार। कबीरा तुही कबीर तू तेरो नाओ कबीर, आराम रतन तब पाई है जो पहले तजै शरीर। कबीर चंख ना चंखी है तुमरो कहो ना होए, कर्म करीम जो कर रहे मेट ना साके कोए। कबीर कसौटी राम की झूठा टके ना कोए, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। कबीर उज्जल पैर का परे पान सुपारी खाहे, एक सहर के नाम बिन बांधे जमपुर जाहे। कबीर बेड़ा जर जरा फूटे शेक हजार, हरुए हरुए तर गए डूबे जन सरपार। कबीर हार्ड जरे

करते हुए सो होए। कबीर बैसनो की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करै पीवै निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछै लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। कबीर हर दीपी अरी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिलै दोनों वरन गवाए। कबीर हर दीपी रतन हरै चून चिहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात वरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार।

कबीर माए मुंडोते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे तो मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पै निदान सब जा पूछे धर्म राए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै रात जगावन जाए, सरपन होय कै उतर जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै अहोई राख नार, गद ही होय कै उतर पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जा मुकइए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गोग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जग तो लंगे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ कै कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जह जेवरी, तेह मत बंदो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैना, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैना। कबीर नैन निहारो तुझ कहो श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममता रे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चातरक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी जो निस्बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सोवे सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोड़ पसार। कबीर

मुख ते राम समाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी माए सुमाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आप पे दे, नानक सो सालाही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारे मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबै रथा तल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड और रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तोहे साध प्रम की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जाओ ग्रहो करे ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग, बैराग।

पायो सत प्रगट्यो रव लोए, दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए, सच तीर्थ सच इशनान अर भोजन पाओ सच, सदा सच पाखंत सो है, सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है, जिस सच संयम वर्त सच कबजन कल वखान, दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म प्रवान, अमै दृष्ट शुभ करै हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल, सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै, गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम काल खतोवै, सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सवैये महल्ले तीजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोई पुरख सिवर साचा जां का एक नाम अशल संसारे, जिन भगत पवजल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान, तित नाम रसक नानक लहना थप्यो जिन सर्व सिद्धि, कवजन कल सबुद्धि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया, कीर्त रव किरण प्रगट संसार है साख्त रोवर मवल सरा, उत्तर दक्षिण पुब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा, हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया, सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर कौ फुरिया, सिमरै सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा, सिमरै नखयत्र अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद वरा, ससियर अरसूर नाम उलासै सैल लो जिन उदरिया, सोई नाम अशल भगतै पवतारण अमरदास गुर कौ फुरिया, सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुद्रिया, चौरासी सिद्ध बुद्ध जितराते अमरीक भवजल तरिया, उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा काल कबीर किल विखहरिया, सोई नाम अशल भगतै पवतारण अमरदास गुर कौ फुरिया, तित नाम लागते तीसते आवै जति तपी सुर मन वसिया, सोई नाम सिमर गंगे पितामै चरण चित अमृत रसिया, तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सतकर संगत उदरिया, सोई नाम अशल भगतै पवतारण अमरदास गुर कौ फुरिया, नाम कित संसार किरण रव सुर तर साखै, उत्तर दक्षिण पुब देश पश्चिम जस पाखै, जन्म ता हो सके अथ जित नाम हरदय निवासै, सुर नर गण गंधर्व शे दर्शन आसासै, पलो प्रसिद्ध तेजो तन कल जोड़ कर त्यायो, सोई नाम भगत पवजल हरण गुर अमरदास तैं पायो, नाम ते आवै देवते तीस अर साधक सिद्ध नर, नाम खंड ब्रह्मंड तारे जह नाम समाधे हो हरक सोग सम कर सहारे, नाम सिरोमण सर्ब मैं भगत रहे लिवतार, सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार, सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गुरु मत निर्वैर लीना, जिस धीरज तुर धवल तुजा सेत बैकुंठ बीणा, परसै संत प्यार जिह करतार है संजोग, सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर कीतो जोग, नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस, सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुर सेवयो, जिस पसाए गत अगम जानी

वर्ष एक हो फिर ओ किने नौ पर चौल आयो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणों क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिब तू रखे तिव रहो पहर समाध सुना हो ज्ञान है आसन चढ़े आओ धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ पै निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार गुर अमरदास सल पान तैं दल जितो इव युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जिने की आसा सतगुर से परम पद पायो अबनासी अब गाते आयो तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सतसंगत आत्म रंग चलूल पया जागया मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अनपव उन्मान अकल्यव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर धारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलुचरै तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सीर सनहु फुटै सतगुर प्रमाण बिदन सिरयो जग जस्तूर बजायो गुर रामदास कलुचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनिध नाम निधान रिद सिद्ध ता की दासी सह सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो बनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कलुचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सरसै समायो आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कलुचरै तैं जगत उदाहरण पायो
जगतो धार नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर ते शब्द निशान मजायो से सदा सहे शावान संतोख सराय चाओ सदा सीर सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तार है शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बिख्याता एहन इस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दृद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म करम पूरै सतगुर पाई है जां की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जानै को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथनहार तुझै बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना डंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहनिस जप धर्म करम पूरै सतगुर पाई है हम बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नामान नाम सो अपार सार दिनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना नल कव पारस परस कच कंचना होए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर राज जोग तख्त दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्न देखत गत चरण कवल जास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राजयोग तख्त दियन गुर रामदास रड जिसै तारियो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सप्त समुन्दर के तारियो त्रिपवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवण सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै
ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਉ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਨੈ ਕਿਆ ਗਰਵ ਦਿਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੈ ਘਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਪਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹਿ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ ਅਗਨ ਕੱਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹੋ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਹੋ ਕੀਓ ਤੇ ਅਕਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲ ਯੁਗ ਸੁਨਤ ਸਮਾਧ ਸਬਦ ਜਿਸ ਕੇ ਰਹੇ। ਫੁਨ ਦੁਖ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰਓ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਤੇ ਨੇਰੇ। ਪੂਰਵ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਹੇ ਪਰੇਰੇ। ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿਦ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪੀ ਉਸ ਪਿਵੰਨ ਕੀ। ਬੰਛਤ ਸਿੱਧ ਕਉ ਬਿਦ ਮਿਲਾਇਓ ਪੂਰਨ ਭੋ ਮਨ ਠੌਰ ਬਸੋ। ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੋ ਦਹੰ ਦਿਸਤਾਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ। ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਿਨਾਇਓ ਗਇਓ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਨ ਕੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ। ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਪਾਨ ਡਰਿਓ। ਪਨ ਦਾਸ ਸੁਵਾਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਪੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰ ਨਾਗ ਸਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ। ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸ਼ੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ। ਸੋ ਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਨਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤਹਿ ਕਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ। ਝੋਲਨਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਨਾਮ ਨਾਮ ਨਿਦ ਅਪੈ ਰਸਨ ਅਹਿਨਸ ਰਸੈ ਸਤ ਕਰ ਜਾਨੀਆ। ਫੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖੈ ਤੇ ਆਈਐ ਅੰਨ ਮਾਰਗ ਤਜੋ ਭਜੋ ਹਰ ਗਿਆਨੀਆ। ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦ ਤਰੋ ਪੰਚ ਭੂ ਬਸ ਕਰੋ ਜਨਮ ਕੁਲ ਉਧਰੋ ਦੁਆਰ ਹਰ ਮਾਨੀਆ। ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਬੰਛਵੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਆ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ ਅਗਮ ਗੁਣ ਜਾਣ ਨਿਦਾਨ ਹਰ ਮੰਤਰੋ ਧਿਆਨ। ਅਹਿਨਸ ਕਰੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦੈ ਤਰ ਫੁਨ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਅਥਾਹ ਮੱਜਨ ਕਰੋ ਸੰਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੋ ਨਾਮ ਸਚ ਰੰਗ ਸਰ। ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਕਰਤ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤ ਹਰ ਮੁਗਧ ਮਨ ਪ੍ਰਮ ਤਜੋ ਨਾਮ।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत युग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियं, हस्त कमल माथे पर धरियं, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए, गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसे बनवारी, ते लहना थाप जोत जगतारी, लहने पंथ कर्म का किया, अमरदास पल्ले कहु दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो, हर का नाम अखै निद अप्यो, अप्यो हर नाम अखै निद चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियं, बंदे जो चरण सरण सुख पावै, परमानंद गुरमुख कहियं, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप कोखण परणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जहां की, श्री रामदास तारण तरणं, जेहे अमृत बचन बाणी, साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंस तिलक सुंदर दशरथ, कार मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा, हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै, तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच, काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की, श्री रामदास तारण तरणं, प्रताप सदा गुर का कट कट, प्रगास पया जस जन कै, एक पड़ै सुने गावै, प्रभाते करै इशनान, इशनान करै प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं, रहया पूर बहुविध वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जां की, श्री रामदास तारण तरणं, जिनों बात निश्चल त्रु जानी, तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं, जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत, परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर, मन बच क्रम से भी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसे दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महामग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰ ਨਾਖ ਸਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲੱਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉਂ

निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइए परमार्थ सत संगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस वेद बखाण निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया त्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कशु ना विचारन को हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पवसागर पार उतारन को। संतत ही सत संगत संग सो रंग रते जस गावत है धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तारना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर सदा सब दुरत नागर। संत मराल करै कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कलयुग दुरत दूर कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरै फिरत सगल जुग कब होक को उपावै आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत बरंच जस गावै जाको शिव मन गहे नात जात कबलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तिहो लोग प्रगासे देख दर्श पटक प्रम पजत दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत आलस मुह जो कुसम सुभासे बिद मान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ ताहे कहा परवा कहूं की जा कै बसीस धरियो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई अपने आप ही पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर गण गंधर्व खो जंत फिरे अब नासिया चाला जोनी संपाओ पुरखोत्म अपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस ओ ही ओ। गुर अमरदास करतार

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिद पावै सोई रामदास गुर बल पहन मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड़ियो पास ताते गौ हर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबसर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ मान तुम मली अगर प्रगट सुवास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख

एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससड़ सुइया केव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पी टहदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैणिया पार पहला वत सियाण कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहु मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलन हार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वञाए नी कपरी चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर सिंह आलाए बेड़े डुबन नाहे पौ नानक दुनिया कैसी होई साल को मित ना रहो कोई पाई बंदी हे चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया है करके ओहे करेन गल्ला पिटन सिर खोहेन नाव लैन यार करन समाए नानक तिन बलहार जाए रे मंडी गना डोली ऐ सीधे मार्ग ताओ पाछे बग डरावनो आगे अगंत लाओ सह सह जियरा पर रहो मां कहो अवर ना टंग नानक गुरमुख छुट्टी है हर प्रीतम स्यों संग बाग मरे मन मारी है जे सतगुर दिखिया होए आप पछाण हर मिले बहु नम्र ना होए कीचड़ हाथ ना बुढ़ई एका नजर निहाल नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची पाल अगन मरै जल लोड़ लहो विण गुर निर्जल नाहे जन्म मरै परमाइय जे लख कर्म कमाहे जम जागात ना लगई जे चलै सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेलै मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल लाए मन तन मैला अवगुणी चिंज परी गंदी आए सरवर हंस ना जानिया काग कुपंखी संग साग स्यों ऐसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावन नानका गुरथ तीर्थ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी जा हर भगत ना पाओ पैंदा खांदा बाद है जा मन दूजा पाओ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा या लाओ नानक नाम सलाहे तू हो रहा मैं आवो जाओ हैन विरले नाही कणे फैल फकड़ संसार नानक लगी तोर मरै जीवन नाही तान छोटा सेती जो मरै लगी सा प्रवान जिसन लाए तिस लगे लगी ता प्रवान फिरम पै कामना निकलै लाया तिन सुजान भांडा तो वै कौन जे कच्चा साजिया तातू पंजर लाए कूड़ा पाजिया भांडा आण ग्रास जात पावसी परम जोत जागाए वाजा वापसी मनो जे अंधे कूप कहया बिरदरा जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे करूप एक कह जान कहया बुजन ते नरसुर स्वरूप एक ना नाद ना बेद ना गी रस रस कस ना जान अंत एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकर सर अखर का प्यो ना लहंत नानक ते नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म जप तप संजम कमावै कर्म सील संतोष का रखै धर्म बंधन तोड़ै होवै मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करै शरीर खेत पछाणै बीजै दान सो खत्री दरगै प्रवान।

एको ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीन कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन बिख्यन स्यों काहे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर मना परै न जम की फास तरना पो यों ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत बिरद भयो।

तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औध कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जानो।

कट कट में हरजू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्तत निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे।

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जेहबा गुण गोबिंद पजह, करण सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, परह न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। कहो नानक अपन तरै, और न लेत उधार। जो सुपना यार पेखना, ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने, प्राणी डोलत नीत। कोटन मैं नानक को, नारायण जह चीत। जैसे जलते बुध बुदा, उपजै बिन सह नीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई, मद माया कै अंद। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले है। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे है। माया कारण ता वही, मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै, रूप राम तह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो, बिसरयो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर

कहो नानक हर भजन बिना परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई। चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत। जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कै नाहे मन। जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजित नहीं नित। नानक एह बिदहर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरै गुमान। नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन। कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है
जान ले हो रे मीत कह नानक थिर नारा।

एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है परों आज कह काल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाय। नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ। कहो नानक एह बिपत मैं टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो

राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौसकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको भारा खौ खटियो पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी

संग दीपक के थाप कालंका कुंतले और अम्मा कमल कुसुम चंपक के नमा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावै पांचों संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यों पांचों थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुन गुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचो चीनी बैरा तार गज तार के दारा जबली तार नट औ जल तारा पुन गावे शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग

कष्ट रागी उन गाए संग राग नीतीस सबे पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कर नौन दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसीस दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास।

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल लै जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवान अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सुवारे, गावह इंद इंदासन बैठे, देवत्यां दरनाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़ न रखी सरे,

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुझी हर सच्चे सृजनहार सब जी तुम हरे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तुम कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक

जिन निरपहो जिन हर निरपहो त्याया जी तिनका पहो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी।

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

मन तन सौंपे आगे धरे होमे विच हुमार तन गुरमुख सो परवान है जे कदे न आवे हार कर्म मिले ता पाईए विण कर्म पाया ना जाए लख चौरासी तरस दे जिस मेले सो मिले हर आए नानक।

हर दरगाह पत खोए। हम मैं गुरमुख खोई नाम रत्ते सुख होए। मेरे मन अहनस पूर रही नित आसा, सतगुर सेव मोह पर जलय, कर ही माहे उदासा रहा। गुरमुख कर्म कमावे बिगसै, हर बैराग आनंद अहनस भगत।

जपिया अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिया लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभु शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह।

नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सदगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख न मनहु विसार रहाउ।

थान थनंतर डब रहया प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजे ओन जहान।

संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल खुंच तू सब चूकै सोग संताप। रहाओ जिस कारण तन तहरिया सो प्रभ डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभ अपनी नदर निहाल। मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाखे

रहाव, सगल पदार्थ तिस मिले। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए। गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अग खंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागै डंड। गुर नाल तुल न लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

सेवा कर सेवा करण कारण एक ओही जिनकी आ आकार तिसह त्यावहु मन मेरे सर्ब को आधार गुर के चरण मन माहे त्याए गुर के चरण मन महे त्याए छोड़ सगल स्यान पा साज शब्द लिबलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौं तिन कै बलिहारने जे गुर की पैरी पाहे साध

करणी सार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिस सो सगल तू है पसरे आपासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महल्ला पंजवा दो कृत सो कृत मंधे संसार सगलाना दोहूं।

जाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कह

सभी मद सब है ते बाहर बे मोहताज बापा पिता हों जानो नाही तेरी कवन जुगता बंधन।

हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

सच्चा नाम सास गिरास न विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाई सच नाम गुणतास।

आए नानक गुर शरणागति मरे नहावे जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लाह।

जाए, नित रवै सुहागणी साची नदर रजाए, साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है, कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

आए, नावें अंदर हों वसा, नाव वसे मन आए। बाज गुरु को बार है, बिन शब्द बूझ ना पाए, गुरमति प्रकाश होए, सच रहे।

श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहजे

पार हाट पटनगढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए।

सदा हर राखै उर तार सो क्यों मन हो विसारियै सब जियां का आधार। शब्द मरै सो मर रहै फिर मरै न दूजी वार शब्द ही ते पाई है हर नामे लगै प्यार बिन शब्द जग भूल।

सहज पतार मान रे राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख

हर बार कर सोहागनी निर्मल साचै नाई मन मह मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार इकत ता दैरल मिले गल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजय गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजय खिन खपै खिन आवे खिन जाए शब्द पछाण

गुरमुख मन समझाए। नानक नाम ना विसरै छूटै शब्द कमाए। श्री राग महला पहला चित्ते जिस सह तौल हाय।

गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे। नानक तरिय सच नाम सिर शाहा पातशाह। मैं हर नाम न विसरै हर नाम रतन बेसाह। मनमुख पौजल पच मोए गुरमुख तरे अथाह। श्री राग महला पहला घर दूजा

मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसया, अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, आनंदन भगत।

पंखी बिरख सुहावड़े उड़ह चौदस जाए, जेता उड़ह दुख कणे नित दाज है तै दिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए। शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल।

समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए।

शब्द जीवत मरै गुरमुख भव जल तरणा वड्डै भाग नाउ पाइयै गुरमत शब्द सुहाई आपे मन बसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई इकना मनमुख शब्द न पावे।

सतगुर शरणा सतगुर सच दिढ़ाया सदा सच संयम रहना सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्द पवजल तरणा लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पत खोई सतगुर शब्द सुनाया।

रहाओ। तुद संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया वेख है कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार जापदा सब नावै नो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कौ बल जाइय जित मिलिय परम गत पाइय

जा जम पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा किसै न मिलया भेत भेत चेत हर किसै न मिलियो जा जम पकड़ चलाया।

मात पिता सुत हेत मात पिता सुत ने कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करणी कार कराई राम।

करम धर्म नहीं पूजा। नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै बनजारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए। जोबन घटै जरुआ जणै, बनजारिया मित्रा। आम घटै दिन जाए, अंत काल पछ

दुख खोवहो। गुर सत गुर स्वामी भेद न जानहु, जित मिल हर भगत सुखांदी। कहो नानक प्राणी चौथै पहरै, सफलो रैन भगतां दी। श्री राग महला पंजवां।

पकड़ चलाया मन मुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेविया से दरगाह सदा सुहेले कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवे सो खात कहो नानक भगत सोह है दरबारे मन मुख सदा पवात श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद इयाणी पे यड़े क्यों कर हर दर्शन पिखे।

गोविंद नाम संभाले, मन प्यारिया जी मित्रा हर निभ तेरे नाले, संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए, मन चिंदे से ही फल पावे चरण कमल चितलाए, जल थल पूर रहया बनवारी घट घट नजर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले, मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे।

दुख मिटाया, चित्र गुप्त का कागद फारिया, जम दूता कछु न चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली, मन प्यारिया जीओ मित्रा, कर संतां संग निवासो, मन प्यारिया जीओ मित्रा, हर नाम जपत परगासो।

मोहयो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिझाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियन कर बस पए मन सब सुख बुठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए।

हर कीर्त कर्म कमाओ, मन हर हर लगा चाओ, गुरपूरै नाम दृढ़ाया, हर मिलया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जो

अपार रतन अमोल कपाया गुर का शब्द विचार जिहवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार नानक सच्चा सतगुर सेवै।

मन मूर्ख मिलै सजाए, जिन जियो पिंड दिता तिस कब हूं ना चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे, जमका फाहा गल हुन कटिए, फिर आवै जाए, मन मुख किशु न सूजै अंधले,

कमाए कूड कुसात कमाए गुर प्रसादी मन जने हर से तीले बलाए नानक गुरमुख सच कमावे मन मुख आवे जाए पौड़ी हर के संत सुनहु जन पाई हर सतगुर की एक साखी जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन लै हृदय राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम।

देओ पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवे दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालत दुख भुख सब लह जाती।

एक स्वान कह कर गावण जननी जानत सुत बड़ा होत है इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड कर एकत ही

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया। तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राज।

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारिक दीन करहो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल।

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग पौजल गुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरम

जियो कोल कुमहाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाऊ। पाग होवा गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर मह पाया। सेव करी पल चसा न बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरे बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महताड़ी लाई, आसन ऊच सवारिया जियो। फिर घिर अपने ग्रह में आया, जो लोड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संत हो, गुर अनुभव पुरख दिखारिया जियो। आपे राजन आपे लोगा, आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई, सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया, तिस रस आया जिन भेद लहया।

सुहाग बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद विनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सागुणवंती सावड भागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड़ बिचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई प्रधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबराई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए। थिर सुहाग वर अगम अगोचर, जन नानक प्रेम साधारी जियो। माज महला पंजवां, खोजत खोजत दर्शन चाहे, भांत भांत बन बन अवगाहे। निर्गुण

तै द्वारै दर्शन पेखत मन आग हवै नानक मिलन सुभाई जियो माज महल्ला पंजवा दुख तदे जा विसर जावै भुख व्यापै बहु बिद धावै सिमरत नाम।

अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपो मन सिमरत ठंडा थी मां जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्तायन गुरु।

दुर्मत बिनसी कबुद्ध अभागी, सच घर बैस रहे गुण गाए, नानक बिनसे कूरा जियो, माज महला पंजवां, विसर नाही ए वडदाते, कर कृपा।

पियो। ज्यों बारिक पीखीर अगावै, ज्यों निर तन तन देख सुख पावै। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियारै दीपक परगासा, भरता चितवत पूरन आसा। मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो।

तू सूखम होवा अस्तूली, तू जल निद तू फेन बुद बुदा, तुद बिन अवर न पालिए जियो। तू सूत मणिए पी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मध अंत प्रभ सोई, अवर न कोय दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्वाण रसिया रंगराता, अपने करतब आपे जान है, आपे तुद संभालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे।

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे। आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो। अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी।

सो सच स्वामी रिजक सब सकौ दिए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाई है, सब पौ बिन सह हर हर त्याई है।

गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया जल थल महियल दै दिस वरसाया शांत पई बुझी सब तृष्णा आनंद।

सफल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावै अनदिन नित जागी, बहा पकड़ तिस स्वामी मिलै, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

यो मन भिन्ना तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावणिया हो वारी जियो वारी एकस स्यों चित लावणिया गुरमति मन एकत घर आ।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

मनमुख अंधे सोध ना सारा, गुरमुख होवै सो अपना कर राखै। पंच दूत शब्द पचावणिया, एक गुरमुख सदा सच्चै रंग राते। सहजे प्रभ सेव है अन दिन माते, मिल प्रीतम सच्चे गुण गावहै। हर दर सो

कै शब्द आधारा नानक नाम मिले वडियाई दुख सुख सम कर जानणिया माज महला तीजा तेरियां खाणी तेरियां बाणी बिन नावें।

माया मोह शब्द जलाया, सचो सच्चा वेखसा लाहे गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम ना संभाल है से वड भागी। सच्चे शब्द आप हर नाम संभाल है से वड भागी। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभाल है से वड भागी। सच्चे शब्द आप मिलाए, सतसंगत सच गुण गा बनिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओ अग

काई बिख बिहाज है बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी को जाना दूजा मार मन सच समाना।

निर्मल वाजै अनहद धुन बाणी दर सच्चै सोभा पावनिया। निर्मल ते सब निर्मल होवै निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै। निर्मल नाम लगे बड़ भागी निर्मल नाम सुहावनिया। सो

गुरमुख महल चुकावणिया, गुरमुख महल चुकावणिया, माज महला तीजा। गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा। मन उजल सदा मुख सो

पहला। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नै जलो, अन्न पौन थिर ना कोई, एक तुई महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कुई, एक तुई महला पहला।

सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महला पहला पौने पानी अग्नि का मेल चंचल चपल बुद्ध का खेल नौ दरबार।

मैं बनजारण राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ कोकिल होवा अंब बसा

भगत करहै मूर्ख आप जनावहै, नच नच टपहै बहुत दुख पावहै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए।

मुरारा, शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा, तुर मस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित बिद पाई संत जन हो जिस देख हों जीवा, हर बिन चसा ना जी।

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुन

दिन सजाए कूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर भावै। कृष्ण बल भद्र गुर पग लग प्यावै।

जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्ते।

हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर कै आगे सतगुर दाता नाम दिढ़ाया मुख मस्तक भाग सभागे राम गुरमत हर लिब लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिब

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया धारी, तिन जम जोहन लागे, उन सतगुर आगे सीस ना बेचया, वे आवह जाहे अभागे।

और पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो। मन

सुख निदान हर अलख स्वामी। जी जंत तेरी शरणाई, नानक नाम मिले वड्याई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। जी जुगत जाके है हाथ, सो सिमरहो अनाथ को नाथ।